0: Bunny, extreme energy drink.
1: Radio Bunny FM. Radio Bunny FM.
2: रेडियो भेरी एफएम 98.6 वेक्सी 2.7 मेगाहर्ट्ज।

0: अशोक साल त ढुक्क नारे बल्ली
1: हा त पोर्सालिक बाघ सम्झोट आम हिन्द लक्तिर हटबरा पानी बस्दा बेला अस्ति कहाँ र सिक जाए त सोचो त लट्ठी ठिक्कम घर डान डान पानी बर्से टिकी मन छटपटाइ लाग
0: हा त धन्न ब्यालम्ब डिक्टिकम से सुरक्षित ठाउँ सरली नारे बट्टी
1: हा हो बदा
2: बर्खक ब्यालम बह्य ढ्यार जोखिम रहत उह मार बहिया से बचकला पहिले हा सावधानी अपनाए लद्या खोलम पानी बरल बाकल से सावधान रही एम्बुलेंस सुरक्षा निकाय स्वयं सेवगन के संपर्क विवरण तक सूची बनाई एक चुट्य प्रयोग के लाग झटपट झोला तैयार पारी वो बरखक ब्यालम संक्रमण के डर ध्यार हुलको से पानी ढिका के पी स्वच्छता में ख्याल करी
3: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशेषता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश
4: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ बर्दियाको आवाज रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज गर्जन त सधैँ बाघ झैं

0: ये लड़की है अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह
1: ये लड़का है अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह
0: ये लड़की है अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह
2: कबूल है।